होती है जिससे ये सआदत छिन जाती है, और कौन सा वो पॉइंट होता है जिस पे हम तवज्जो देते रहें तो ये सआदत हमेशा हमारे हाथ में रहेगी, इसको हमें जरूर सोचना होगा। जो मुझे समझ में आता है, सबसे पहली चीज जो इस सआदत को हमारे पास रखेगी, पहले भी रखवाई है और आइंदा भी रखवाने में कामयाब हो सकती है, वो हमारा खुलूस है, वो हमारा तहे दिल से एहतराम है। अगर हम लोग पुरखलूस रहेंगे अपने इस काम के अंदर, हमें मालूम है ये जो कुछ अमल अंजाम दे पा रहा है ये मानवी अमल है, ये दुनियावी अमल नहीं है। हम एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं देते कि वो आए और लोग दिल खोल कर अपनी जानों की हद तक नजराने पेश करके वहां मौजूद होते। शायद आपने देखा होगा पाकिस्तान में, दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर, जहां खतरा ज्यादा होता है वहां लोग ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। हम सबको मालूम है ये दुनियावी अमल नहीं है, ये कोई मटेरियल एलिमेंट नहीं है जो इन्वॉल्व हुआ हुआ है, ये प्योर स्पिरिचुअल है। अगर ये प्योर स्पिरिचुअल है, इस स्पिरिचुअलिटी के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो खुलूस है, सिंसेरिटी। अगर आप चाहते हैं ये जगह सैयदुश्शोहदा के जिक्र के लिए रहे, हम चाहते हैं हमारी नस्लें सैयदुश्शोहदा के लिए रहें, हम चाहते हैं आज़ादारी का असर माशरे के ऊपर हो, दुनिया के ऊपर हो, पहला काम अपने खुलूस की हिफाजत करना। बदकिस्मती से जिस दौर में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में खुलूस वो चीज है जो नापैद है। इस वक्त जो दुनिया की मुश्किल है वो पुरखलूस रहना है। इस वक्त सबसे बड़ा डायलेमा जो हमारे पास आ गया, चाहे वो फैमिलीज के अंदर बात हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर बात हो, चाहे वो सोशल वर्क के अंदर बात हो, किसी भी चीज के अंदर आप देख लीजिए, जो हमारे सामने थ्रेट है वो ये देखिए, लोग पुरखलूस नहीं हो रहे। अब इसमें दिखावे का मामला है, जाती मफादात का मामला है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं। तो पहले दिन अशरे मजारिस के पहले दिन के लिए जो नुकता मैं आपकी खिदमत में सबसे अहम अर्ज करूंगा, किसी तरह कोशिश कर लीजिए हमारा और आपका खुलूस बाकी रहे, इसमें हमारी पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, हम कोई ऐसा काम कर सकें जिससे हमारा कोई कंट्रीब्यूशन शो हो सके, साबित हो सके, इंशाअल्लाह। ये पहला पॉइंट है, एक दो पॉइंट और अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहु। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग मुख्तलिफ सकाफतों से मिलकर यहाँ पे जमा होते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, यहाँ की अपनी कल्चर है, आप में से कुछ लोग शायद सब कॉन्टिनेंट से हैं, ज़्यादातर जाहिर है उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान के किसी इलाके से होंगे, कुछ लोग हिंदुस्तान के किसी इलाके से होंगे। खुद हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी अपनी सकाफत है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी अपनी सकाफत है। जब आप ऐसे किसी जगह पे जमा होते हैं तो फिर अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ता है, हमने किस सकाफत को लेके आगे चलना है। ये अज़ाए सैयदुश्शोहदा है, आप इसी वक्त बिल्कुल जब आप तशरीफ फरमाए हैं यहाँ पे उर्दू में मजलिस हो रही है, इससे थोड़ी देर पहले इंग्लिश में हुई थी, किसी और मोहल्ले में तशरीफ ले जाइए वहाँ फारसी में हो रही होगी, कहीं पर मुमकिन है कि किसी और जबान में हो रही होगी, और हर इलाके का कोई ना कोई असर उस आज़ादारी पर भी होगा। तो मुमकिन है कि आपके और हमारे माशरे के अंदर जो मजालिस तश्कील पाती हैं, उनमें जो जुलूस होते हैं, उनमें तरीक़ेकार उससे बहुत मुख्तलिफ हो जो ईरान के जुलूस में होता है, जो मसलन इराक़ के जुलूस में होता है। अलम की शक्ल को भी आप देख सकते हैं, मसलन अगर ज़ाहरी तौर पर देखूँ तो ईरान में जो अलम बनते हैं वो हॉरिजेंटली बनते हैं और उनको डेकोरेट किया जाता है, और जो हमारे यहाँ बनते हैं वो मामूलन वर्टिकली ऊंचे अलम तश्कील पाते हैं। ये भी मुख्तलिफ है कि किस इलाके में किस तरह से किस रंग में उठाया जाएगा, कहीं मुमकिन है सियाह अलम के ऊपर इसरार हो, कहीं मुमकिन है कि सब्ज, और मुमकिन है कि कहीं पर सुर्ख, ये सब भी होता है। मैं अपने आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे सैयदुश्शोहदा का अज़ादार होने के नाते जो इस पर हसास है कि कहीं मैं कोई गलती ना करूं, किस चीज की हिफाजत करनी है? आया अलम के रंग पर और अलम के तरीके को बचाऊं या नहीं, कुछ और चीजें

में इजाफा नहीं हो रहा, आपके वजूद में इजाफा नहीं हो रहा। अगर मैं 50 साल अज़ादारी में शिरकत करूं और मेरा वो जो खुदा की वाकईयत के बारे में इल्म है, मैं +2+2 की बात नहीं कर रहा हूं, खुदा की वाकईयत के बारे में जो मेरा इल्म है, हकीकतों के बारे में, अगर वो इल्म नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब है मुझे कुछ सवाब तो मिल रहा है लेकिन मेरे वजूद में इजाफा नहीं हो रहा। अगर मैं 50 साल शहीद-ओ-शुहदा की अज़ादारी में शिरकत करूं और इंसानियत को जो मुझसे फायदा मिलना चाहिए उसमें इजाफा नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरा वजूद नहीं बढ़ रहा। अब मैं आपकी खिदमत में आखिर में जाके अर्ज कर रहा हूं, अगर आपकी और मेरी अज़ादारी कबूल होती रही, हमारा और आपके वजूद में इजाफा होगा, वजूद में इजाफा होगा। और वो वजूद में जो इजाफा होगा वो क्या होगा? इल्म हकीकतों का आपके अंदर बढ़ेगा, इंसानी सिफात जो आपको अहले बैत से नजदीक लेके जाएंगी वो आपके अंदर बढ़ेंगी, इंसानों की खिदमत जो किसी के वजूद के जरिए दूसरे इंसानों को पहुंचती है वो बढ़ेगी अगर अज़ादारी शहीद-ओ-शुहदा कबूल होती रही। ये आपने हासिल करना है, जो इसको हासिल करता चला जाएगा वो, अब पता नहीं ये नतीजा अच्छा नतीजा किसी को लगे या ना लगे, जो इस काम में आगे बढ़ता चला जाएगा अज़ादारी शहीद-ओ-शुहदा के सदक़े में, शहीद-ओ-शुहदा उसको अपने लश्कर में आने की इजाजत देते रहेंगे, वो शहादत से नजदीक तर होता चला जाएगा। और इंशाअल्लाह एक मौके के ऊपर शहादत के मकाम को हासिल करेगा, चाहे गर्दन कटे चाहे ना कटे। ये भी अर्ज कर दिया मैंने आपकी खिदमत में, कुछ लोग गर्दन कटा के शहीद होंगे, कुछ लोग बगैर गर्दन कटाए शहीद होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि शहीद-ओ-शुहदा का कोई सच्चा आज़ादार हो और शहीद ना हो, ये नहीं हो सकेगा। ये शहादतें नसीब होनी हैं, बाहर ये किस तरह नसीब होनी है ये एक अगला मरहला है, अभी इतना ही काफ़ी है। जो मौजू है मेरे पास वो ये है कि, और इस मौजू मैंने खुद इंतखाब किया है, कि आज के ज़माने में अगर मैं चाहता हूँ इमामत की नुसरत करूँ, वक्त के इमाम की नुसरत करूँ, मुझे नुसरत करने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं चंद दिनों में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और ये पहले से ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस नुसरत को मैं अपने जहन में सोच रहा हूँ उसके नतीजे में जो मेरे लिए आइडियल है वो ये कि मुझे शहीद होना है, इससे कम को मत सोचिएगा। मौला का एक फरमान आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मौला अमीर मोमिनीन ने फरमाया, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, صل على محمد وعجل فرج। शायद आप लोगों में से तकरीबन हर आदमी ने सुना होगा, इमाम ने फरमाया कि खुदा ने तुम्हें बहुत कीमती खल्क किया है, अपने नफ्स की कीमत जन्नत से कम मत लगाना। आपने सुना है ये फरमान? ठीक है, इमाम ने फरमाया जन्नत से कम इसकी कीमत मत लगाना। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो जो जन्नत से ऊपर है वो क्या है भाई? जन्नत से नीचे नहीं आना, जन्नत से ऊपर क्या है? उस ऊपर के ऊपर क्या है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इमाम फरमाने तो अपने नफ्स को बेचो अल्लाह के सामने, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बि अन्न लहुमुल जन्ना। इमाम फरमाने ये छोटा है, ये कीमत कम है, इससे बढ़कर लगाओ कीमत, इससे बढ़कर लगाओ कीमत तो मौला मुझे क्या नसीब होगा? अहले बैत का कुर्ब नसीब होगा, अहले बैत का कुर्ब, अहले बैत का कुर्ब जो नसीब होगा वो आसाइशों के साथ होगा या कुर्बानियों के साथ होगा? कुर्बानियों के साथ होगा। इसको अच्छी तरह सोच लीजिए, हम बहुत खूबसूरत दौर में हैं। जब पाकिस्तान में तकरीबन हर रोज कोई ना कोई शहीद होता था, तब भी मैं बार बार कहता था, अभी भी कह रहा हूँ, वो ये कि हम लोग बहुत खूबसूरत दौर में, मेरे हिसाब में हम लोग सैकड़ों साल के बाद अहले बैत अथहार की नुसरत के गोल्डन एरा में हैं, सुनहरी दौर में हम लोग। यहाँ बहुत सारे लोग उन हदफों को हासिल कर रहे हैं जिनके लिए लोग सदियों से बेताब थे, ये बहुत अच्छा टाइम है। इसमें मुसीबतें, इसमें जंगें हैं, इसमें कुर्बानियां हैं, लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है। आपको और मुझे चूज़ करना होगा, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है।

Education, family, job, business, assets, अच्छी रिटायरमेंट, खत्म। ये है। तो फिर हम में और बाकी अरबों इंसानों में क्या फर्क है? वो सब भी यही है। कोई फर्क होना चाहिए, कोई फर्क होना चाहिए जिसने अपने सीने पे 30 साल 40 साल या हुसैन का मातम किया, कोई फर्क होना चाहिए। उसमें जिसको उसकी माँ ने घुट्टी में इमाम हुसैन की मोहब्बत पिलाई है, कोई फर्क होना चाहिए। हम में से अक्सर वो हैं जिनकी माओ ने गोदों में उठा के बच्चों के या हुसैन का मातम किया, फर्क होना चाहिए हमें दूसरों। वो फर्क क्या होना चाहिए? दूसरों को दुनिया के लिए जीना चाहिए, हमें अहले बैत अतहार के साथ रहकर जीना चाहिए। इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन, ये हमें सीखना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। मुझे 10 दिन इस पे काम करना, ये कैसे होता है? ये जो हम लोग बार बार वादे करते हैं, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम वलियुन लिमन वालाकुम व आदुवुन लिमन आदाकुम, ये कैसे नसीब होता है? बाकी लोग तो जिंदगियां गुजारते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। आप तो खुद अपनी दुआओं के अंदर, ज्यारतों के अंदर कह रहे हैं, मौला जो जख्म आपको आए वो पहले मुझे आए। आइम्मा हर एक को ये मौका देते हैं कि उनकी तरफ आने वाले जख्म वो उठाए? हर एक को करबला आने देते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब है ये अर्न करना पड़ता है, ये कमाना पड़ता है। कैसे कमाएंगे ये मुझे अर्ज करना है? बस आप ये नहीं सोचेगा मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इमामत किसी चीज को मांग रही है नाउज़ु बिल्लाह ताला हमसे, वो हमने कैसे देनी? नहीं, ये मुझे नहीं कहना है। मुझे ये कहना है कि उनके साथ रहने में एक मकाम होता है, वो मकाम अर्न कैसे करना है, कमाना कैसे, मुझे ये आपकी खिदमत में अर्ज करना है। और इख्तिताम में क्या चाहूंगा? इख्तिताम ये चाहूंगा कि हमारी, अब अपने लिए कह रहा हूँ, बाकियों के लिए मर्जी है, मैं अपने लिए पूरे खलूस के साथ इख्तिताम चाहूंगा कि खुदाए तू मुझे शहादत की मौत नसीब करना। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि इससे कम पे मरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मरने में अजमत होनी चाहिए, मरने में एक डिग्निटी होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप और मैं सब इस खानदान के मानने वाले हैं जिसने 250 साल शहादत दी। 250 साल, एक नस्ल नहीं, दो नस्ल नहीं, कम से कम 11 मासूम नस्लें कुर्बान हुई। 11 मासूम नस्लें, किसी नबी की तारीख में मुझे नहीं मालूम किसी नबी की 11 नस्लें मासूम नहीं आई होंगी, ये मासूम नस्लें कुर्बान हुई हैं। और इन 11 मासूम नस्लों के साथ मासूमों की सी शबाहत रखने वाले नहीं मालूम कितने हजार लोग कुर्बान हुए हैं। ये सब कुछ हुआ है। मैं क्या चाहूंगा? मैं ये चाहूंगा कि खुदा मैं हकीर हूं, मैं इंतहाई छोटा इंसान हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस काफिले में मैं भी शामिल हो जाऊं। ये मेरी ख्वाहिश होगी। और मैं शामिल होने के लिए किससे मदद तलब करूं? शब आशरा मजालिस की जो पहली मंजिस होती है, तो मैं अपने आप से एक अहद किए हुए हूं, वो ये है कि चाहे मजलिस आशरा हो चाहे खमसा हो, पहली मजलिस में मसाइब बीबी सैयदा ताहिरा के पढ़ूंगा, बीबी उम्मुल आइम्मा के मसाइब पढ़ूंगा। मैं जो सैयदा का मानने वाला हूं, क्या मैं दरवाजा भुला सकता हूं? मैं जो इमाम हुसैन के गम में रोने आया हूं, अल्लाह अकबर, बीबी के फजाइल में पूरी दुनिया बयान करती है कि जब बीबी तशरीफ लाती थी, अल्लाह के नबी अपने मकाम से खड़े हो जाया करते थे। नहीं मालूम अल्लाह के नबी ने कभी नहीं कहा कि बाप अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा हो जाया करे।

0: हर लम्हे सैकड़ों तरह के वहम ख्याल उसके जहन पर हमला आवर होते हैं, और जब वो उनके लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब ना हासिल कर ले, बाज नहीं आता।
1: बड़ी दिलचस्प बात है। क्या तुम लोगों के जहन में भी हमारे दोस्त अमरयास के मानिंद ख्याल आए हैं?
0: बेशक मेरे दोस्त, इनसे क्या पूछना है?
1: इन्हें खुद जवाब देने दो।
2: अमीरुल मोमिनीन अच्छी तरह जानते हैं कि
1: ए मेरे चचा के बेटे, बस करो, फिलहाल मुझे माविया ही कहो।
2: ठीक है, वो जानते हैं कि मैं सालहा उनकी रकाब में रहकर लड़ा हूं, और हजारों बार मैंने उनके लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। अब मैं अपने से ये सवाल करता हूं कि ये आखिरी कदम जो अमीर ने बनी हाशिम का सफाया करने के लिए उठाया है, इसके बाद मेरे लिए क्या सोचते हैं? क्या हुकूमत में मेरा हिस्सा भी रहेगा?
1: अगर ना हो तो
2: कुछ नहीं, फिर मैं इजाजत चाहूंगा कि आज ही आपकी खिदमत से सुबुकदोश होकर कहीं गोशा नशीन हो जाऊं और पूरी उम्र आपके लिए दुआ गो रहूं।
1: बहुत खूब, अब तुम बताओ साहब।
3: अमीर, मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद जानते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। मेरा तो वही रोना है जो मरवान का है। कभी जब तन्हाई में सोचता हूं तो कुछ समझ में नहीं आता, न दुनिया है न आखरत है। अमीर, यहां तो अपने दरमियान हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मोमिनीन तो खुल्लम खुल्ला और खुफिया तौर पर मुझ पर लानत करते हैं। यहां तक कि हुकूमत के बुजुर्ग और कसर के साहिबान तक मेरी तहकीर करते हैं। अमीर, सेहरा नशीन कबीलों के सरदार हमसे ज्यादा मोहतरम समझे जाते हैं। यही कल जो कबीलों के सरदार आपके पास आए थे, वो तैयार नहीं थे कि मुझसे बात करें। यही कहते रहे कि बस हमें अमीर से मिलना है। मैंने सोचा कि अगर अमीर फुर्सत पा जाए ताकि हुकूमत के पाए मुस्तहकम हो जाएं, तो अमीर आप ही बताइए, मुझसे ज्यादा मुतमईन और सालेह कौन हो सकता है जो जिले की फरमान रवाई अपने जिम्मे ले और मजमे को अमीर की इताअत की दावत दे और उसके हुक्म का निफाज करे।
1: अब तुम बताओ मुगैरा।
4: अमीर खुद बेहतर जानते हैं कि मैं हमेशा दोस्त की खिदमत गुजारी और फिदाकारी में मशगूल रहा हूँ, और जिस ज़माने में जो लाजिम हुआ मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने अखलाक व उबूदियत को साबित करता रहा हूँ, और अमीर के दुश्मनों की नाबूदी के लिए कोशिशों में सरगर्दा रहा हूँ। लेकिन तन्हा इस मूरत में मुझे अमीर से कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि नाजा हूँ, और साथ ही ज़हाक के बरखिलाफ़ अपनी आखिरत का भी उम्मीदवार हूँ, इसलिए कि कुरान फरमाता है कि खुदा, रसूल और उसके साहिबान अम्र की इताअत करो, और मेरी निगाह में मुआविया इब्ने अबी सुफियान ही साहिब अम्र है कि जिसकी इताअत खुदा ने हम सब पर वाजिब की है। अलबत्ता ये बाइस नहीं होगा कि दुनिया और उसकी कैफियतों के बारे में फिक्र ना करूं, इसलिए कि कुरान मजीद ने रहबानियत और गोशा नशीनी से रोका है, मुअय्यन किया है कि इंसान दुनियावी नेमतों से बहरामंद हो। यही वजह है कि मैं अपना मुकाबला दीगर अफराद हुकूमत और तमाम लोगों से नहीं कर सकता। मसलन जब मैं खुद फिक्र करता हूँ कि ये सुमैया का बेटा, दरियाओ फ़ारस का हाकिम, मुझ पर कौन सी फजीलत रखता है जो नेमत अर्जी से फैजयाब हो और मैं ना हो सकूँ, खुदा की कसम खून खोल जाता है। और इसी दलील की बिना पर अमीर से तवक्को रखता हूँ कि मुसीबत के वक्त मुझे भी मुरीद अनायत करार दे, ताकि इसकी वजह से दुनियावी नियामतों से भी फ़ायदा उठा सकूं और उसकी इताअत से उखरवी फवायद भी हासिल कर सकूं।
1: खूब, अब तुम बताओ आम्र, तुम तो मालदार और सर्वतमंद हो, मिस्र की हुक्मरानी भी रखते हो, बताओ तुम्हारी क्या तवक्को है?
0: मुझे कोई तवक्को नहीं, कुछ नहीं। क्या करूं, फितरतन मजबूर हूं कि बिना उजरत के कोई काम ही नहीं करता।
1: बगैर उजरत के तो ये जो तुम्हारे पास है वो मेरा दिया नहीं है, हमारा साथ देना और हम दिल रहना, क्या ये तुम्हारे हम ख्याली की उजरत नहीं है?

0: Nein. हमने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। उस्मान की खिलाफत को मुतजलजल किया और अली के खिलाफ परचमे बगावत बुलंद किया, और सिफीन में भी हमें खातिर खा नताइज हासिल हुए। इसके बाद माल गनीमत हमने आपस में तकसीम किया तो तुम्हें शाम की हुकूमत मिली, मुझे मिस्र की। अगरचे ये तकसीम आदलाना न थी, मगर मैं फिर भी खामोश रहा, कोई शिकायत नहीं। राजी हूं, मगर अब मसला कुछ और है। तमाम ममालिके इस्लामी की बात है, मुझे भी अपने हिस्से के बारे में सोचने का कुछ हक तो है। मक्कार, आज अमीर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे।
1: ठहरो, तुम्हारे इतनी जल्दी शाम पहुंच जाने ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। मैं ये समझा कि हमारी पुरानी दोस्ती तुम्हें यहां खींच लाई, लेकिन अब देखता हूं कि तुम आइंदा की गनीमतों का हिस्सा तलब करने आए हो। याद रखो कि इस बार कोई गनीमत का चक्कर नहीं है, तुम्हारा गोश्त और खून मेरे वजूद से है। हुकूमत मिस्र कोई माल गनीमत नहीं था, वो तो एक बदबूदार गोश्त का टुकड़ा था जिसको मैंने एक बूढ़े कुत्ते के सामने डाल दिया जो कभी मेरे हाथ चाटने से सैर नहीं होता था। तुम एक रजील माँ के बेटे हो, अभी चेहरे से सफर की गर्दो खाक नहीं उतरी, लगे मेरे मुशाविर और सरदारों को शोरिश पर उकसाने, जमीन और आसमान को एक कर रहे हो ताकि शायद उसके दरमियान तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन गलत सोचा है, इस दफा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और अब तुम लोग मेरे अजीज मुशाविर और सरदारों, बेहतर है कि तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो। मैं मुआविया इब्न अबी सुफियान हूं और मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है। तुम लोग वो नहीं जो मेरी मुश्किल हल करो, बल्कि मैं हूं कि जिसने तुमको यतीम और बिन बाप का समझकर पाल रहा हूं। खूब मेरे पिसरम, हकीकतन कब तुमने सरदारी की, किस सरजमीन पर कब्जा किया और कौन सी जंग तुमने फतह कर ली? क्या वो तुम नहीं थे जो जंगे जमल में बिल्कुल एक बेवा औरत की तरह मालिक अश्तर की तलवार से डर कर दुम दबा कर भागे और मेरे कदमों में पनाह ली? नहीं पिसरमू, नहीं, तुम सरदार नहीं हो, बल्कि दर बदर की ठोकरें खाने वाले एक ऐसे मनहूस कदम हो कि जहां पर भी पड़ जाए सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ हाथ ना आए। अगर सच्चाई और हकीकत जानना चाहो तो मैं अब तक तुमको उस्मान की मौत का जिम्मेदार जानता हूं, इसलिए कि तुम ही उसके मुशाविर यारो हमराज थे बस। और उस बेचारे बुढ़े ने तमाम उमूर में सिर्फ तुम पे एतमाद कर रखा था। और तुम मुगैरा, मैं हमेशा तुम्हें चाहता था और दोस्ती का दम भरता था, इसलिए कि तुम अपने औकात जानते थे। न तुम बहादुरी का दावा करते थे और न तो तुम्हें अपनी दूरंदेशी पर फख्र था, फकत मेरी बनिस्बत अपनी वफादारी पर तुम्हें नाज था, और बस यही एक तुम्हारा इम्तियाज है। वरना मुझे तुम जैसे चापलूस, डरपोक और बेकार इंसान से कोई उम्मीद नहीं है। और अब क्या देखता हूं कि तुम जैसे बेमसरफ इंसान ने भी मुझसे मीरास तलब कर ली है, और तुमको मैं हमेशा जानता था कि तुम्हारे पीछे एक चापलूस और दगाबाज का चेहरा पोशीदा है कि अगर मौका मिल जाए और मुझ तक रसाई हो जाए तो पीछे से मेरी कमर में खंजर भोंक देगा। हाँ, इसमें शक नहीं कि तुम जंग फतह तदबीर शैतनत में मरवान से बेहतर नहीं हो। सरदार, शायद इराक पर जो लश्कर कशी की थी वो भूल गए कि जब तक किसी से तुम्हारा

सामना नहीं हुआ, एक फतेह सरदार की तरह आतशजनी और गारतगरी शुरू कर दी, लोगों के घरों को जलाते हुए आगे बढ़ गए। और जब हुजर इब्ने अदी के चंद सरबाजों से सामना हुआ तो शेर के सामने लोमड़ी की तरह हो गए और रात का सन्नाटा होते ही भाग खड़े हुए और आके मेरे खेमे के पीछे छुप गए। माजी में तुमने कौन से कारनामे करके दिखा दिए जो अब मुस्तकबिल में अपने हिस्से की बात कर रहे हो? कहो तो अभी बुसर इब्ने अत्ताद को हुक्म दूं कि बिल्कुल एक चिड़ेते की तरह तुम्हारा सर उड़ा दे। बल्कि तुम चारों का ये भी सोचा था या नहीं?

0: समझते हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा? मुझे अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा काम करूंगा कि तुम लोगों का नाम सफ़े हस्ती से मिट जाए।
1: हाँ, कर सकते हो, लेकिन हमारे बगैर हसन इब्ने अली का क्या करोगे?
0: हसन इब्ने अली जैसा एक ना तजुर्बेकार जवान मेरा मुकाबला कर सकता है?
1: हाँ, यकीनन कर सकता है। तुमने अभी उसे समझाई कहाँ है?
0: तो क्या तुम उसे अली समझते हो?
1: अली नहीं है, मगर वही शमशीर व तदबीर है। लेकिन अब ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि अगर तुम इससे सही फायदा उठाना चाहो तो हम अली को अपने रास्ते से हटा सकते हैं।
0: अली को?
1: हाँ, हमारे लिए वो अली ही है। अगर तुम इन शरायत में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें हमारी वफादारी दरकार होगी।
0: वफादारी?
1: तुम हमारी वफादारी में शक नहीं कर सकते? हाँ, महंगी जरूर है।
0: मुझे तुम जैसे नौकरों की जरूरत नहीं है।
1: हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, तुम्हारे हम पैमान हैं।
0: अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए शाम काफी है। तुम जैसे नमक हरामों से कोई सौदा नहीं करूंगा।
1: तुम्हारे जानशीन का क्या होगा? यजीद का क्या करोगे तुम? क्या वो तुम्हारी नजर में हर चीज से ज्यादा अजीज नहीं है? कुछ सोचा है तुमने कि तुम्हारा ये नूरे नजर अपने इन चचाओं के बगैर उम्र खिलाफत कैसे अंजाम देगा?
0: कैसे मालूम कि तुम लोग मुझसे पहले वासिले जहन्नम ना हो गए?
1: और तुम्हें कैसे मालूम कि तुम हमसे पहले उसी जहन्नुम में अपने बाप दादाओं से ना जा मिलो?
0: क्या चाहिए तुम्हें?
1: मेरी जवानी के प्यारे दोस्त, तुमसे और मुझसे बईद है कि हम दो छोटी बच्चियों की मानिंद इतना जल्दी एक दूसरे से नाराज हो जाएं। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया?
0: क्या चाहिए?
2: मैं अमीर से यह चाहूंगा कि मुझे मदीने के उमूर का जिम्मेदार बना दिया जाए।
3: मेरी हमेशा से यह आरजू थी कि मैं कूफे का हाकिम बन जाऊं। अगर तमाम इस्लामी ममालिक की खिलाफत अमीर को नसीब हो जाए तो मैं अमीर से यह दरख्वास्त करूंगा कि शाम के उमूर मेरे हवाले कर दिए जाएं।
0: और तुम?
1: फिलहाल मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की सलामती चाहता हूँ। जब तमाम उमूर बखूबी अंजाम पा जाएं तो उस वक्त मैं आपसे मुख्तसर सा इनाम ले लूंगा।
0: ठीक है, मैं चलता हूँ।

0: मैं तुम सबको जानता हूँ, जंगजू और जंग देखे हुए लोग हो।
1: अलैकुम सलाम।
0: मैं चाहता हूँ कि सिपाही की तरबियत तुम लोगों के हवाले हो। अब आप लोग कोशिश करें कि कोई कसर बाकी न रह जाए।
1: तुम यहीं रुको।
2: सलाम उस्ताद।
1: अशरस, क्या खबर रखते हो?
3: अबा मोहम्मद दमिश्क के लिए कासिदे रवाना करना चाहते हैं।
4: ऐसा ना हो कि माविया से दोस्ती करना चाहते हो।
1: फिलहाल हमें उनके पैगाम का पता चलना चाहिए। ए, चलो मेरे साथ आओ। तुम भी आओ, तुम भी आओ।
5: तुम दोनों मेरे साथ आओ, तुम भी आओ।

0: आ जाए।
1: कहाँ?
0: अबा मोहम्मद की जियारत के लिए, मगर नहीं कहा था कि जियारत करनी है।

0: वो देखो उधर।
1: क्यों जा रहा है? दमिश्क का रास्ता तो इस तरफ से है।
2: शायद रास्ता भूल गया हो। चलें उसके पीछे चलें।
1: ठहरो, हम दो आदमी इसके पीछे जाते हैं और तुम दोनों छोटे रास्ते से जाओ। अगर हमने इसको पकड़ लिया तो तुमसे आके मिल जाएंगे, और अगर तुम इसको पकड़ने में कामयाब हो जाओ तो हमारा इंतजार करना है। चलो।

0: मैं तुम लोगों से दोबारा पूछता हूं, क्यों मेरा पीछा कर रहे थे?
1: ठहरो, बताता हूं।
0: यही तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ।
1: हम जानना चाहते हैं जो खत तुम ले जा रहे हो उसमें क्या लिखा है।
0: कौन जानना चाहता है? हाँ सुनो, मेरे पास वक्त नहीं है। दमिश्क का रास्ता बहुत लंबा है। इस मर्तबा अगर मैं चला गया तो याद रखो, किसी भी कीमत पर वापस नहीं आऊंगा। चला जाऊं?
1: ठहरो, बताता हूँ। शम इब्ने जी जोशन, अशअस इब्ने कैस और उर्वत इब्ने उमैर।
0: मुझे याद रहेगा, शिमर इब्ने जिल जोशन, आशा इब्ने कैस और उर्वत इब्ने उमैर।
1: हम क्या करें, हमारा क्या बनेगा?
0: मैं तो भूल गया।
1: चलो आ जाओ, हमने उसे पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया, आ जाओ।
0: ये हारून था?
2: नहीं, शाब था।

0: जाओ उधर खड़े हो जाओ, चेहरे से निकाब हटाओ और अपना नाम बताओ।
1: कासिम इब्ने जाबिर।
2: किस कबीले से हो?
1: कबीले फहस से।
2: अली और उसके खानदान के बारे में क्या जानते हो?
1: जानता हूँ, वह अमीरुल मोमिनीन माविया के दुश्मन है।
2: बनी हाशिम को पहचानते हो?
1: सोने के सिक्कों की आवाज़ों को पहचानता हूँ।
2: इसकी खबर है कि अली मारा जा चुका है और हसन इब्ने अली उसकी जगह पर बैठ गया है।
1: जानता हूँ।
2: अपने कबीले वापस जा सकते हो?
1: आप जब भी चाहें।
2: तुम अपने कबीले जाओगे और अपने सरदारों को हसन इब्ने अली की मदद करने से रोकोगे और उनको हमारी तरफ से यह वादा दोगे कि अगर वो लोग अमीरुल मोमिनीन माविया के लश्कर से जा मिलें तो उनको गारतगरी के हक के अलावा हर एक को 1000 सिक्के मिलेंगे।
1: इताद सरदार।
2: और बाकी जंग खत्म होने के बाद हर माह तुमको 300 दमिश्की सुनहरे सिक्के मिलेंगे। राजी हो?
1: मेरी जान की कीमत तो 10 सिक्कों से ज़्यादा नहीं है। 300 सिक्कों के लिए तो मैं 30 मरतबा मर के ज़िंदा हो सकता हूँ।
2: और अगर हमारे साथ मिलकर लड़ने पर तैयार ना हो तो कम से कम ये काम करो कि वो बेतरफ रहें और हसन इब्ने अली का साथ न दें। कल सुबह सवेरे जंग के लिए निकलना है।
1: इताअत।
0: चेहरे से निकाब हटा, अपना नाम बताओ।
2: इब्ने सायद। किस कबीले से हो? बनी सही। अपने कबीले वापस जा सकते हो? जी हाँ।

0: देखा भी और उनके हाथों का बोसा भी लिया।
1: किस तरह वो देखने में कैसे लगते थे?
0: प्यारी जगह,
1: जवाब दो।
0: यहाँ की आबोहवा कितनी अच्छी है।
1: मैंने पूछा कि उनका उलिया कैसा था।
0: कूफे से लेके यहाँ तक ऐसा दिलकश मंजर नजर नहीं आया।
1: हमें हैरान कर दिया है, जवाब दो, जवाब दो, वरना अपनी तलवार से तुम्हारी आंख निकाल लूंगा।
0: मैंने कहा ना, तुम हसन इब्न अली के कासिद को नहीं डरा सकते।
1: भाई परेशान क्यों करते हो, बताओ तो।
2: बताओ वो कैसे थे, उनकी शक्ल सूरत के बारे में बताओ।
0: बिल्कुल अली मुर्तजा की हैबत।
2: क्या तुमने अली मुर्तजा को देखा था?
0: मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन जब हसन इब्न अली को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अली मुर्तजा को देख रहा हूँ। वही अखलाक व असाफ जो अली मुर्तजा के बारे में सुनते हैं।
3: क्या वाकई तुम अबा मोहम्मद के कातिल हो?
0: हाँ।
2: क्या तुम्हारे पास उनका खत है?
0: हाँ।
3: खत किसके लिए है?
0: माविया के लिए।
1: अबा मोहम्मद ने माविया को खत लिखा है?
0: जी।
1: लाओ देखूं क्या लिखा है।
0: ए, खबरदार, होश में रहो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र करूंगा जो उन चार आदमियों का किया है।
1: कौन से चार आदमी?
0: वही चार आदमी जो तुम्हारी तरह इस खत को पढ़ना चाहते थे।
2: उनके साथ तुमने क्या किया? क्या उनको मार दिया?
0: कुछ नहीं, उन्हें सहरा में आवारा करके छोड़ दिया।
2: हर तुम तो बड़े चालाक कासिद निकले, बड़ा अच्छा काम किया।
0: मुझे परेशान करना चाह रहे थे ना।
2: लो कुछ खा लो।
0: हाँ ये बहुत सही किया, मैंने कुछ नहीं खाया था। कोई आया ना गया?
1: कोई खबर नहीं है, सब अब नौमान है।
2: तुम मेरे पहले शिकार थे।
0: कहा ना कोई आया ना गया?
1: हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कोई खबर नहीं है।
0: फिर ये आवाज कैसी है?
2: किधर से? हाँ हाँ सही कह रहे हो, उधर से, कोई शाम की तरफ से आ रहा है। नहीं वो तो आहिस्ता आ रहा है, कासिद तो दौड़ता हुआ आता है।
0: चलो छिप जाएं।

0: हाँ कासिद नहीं है, ये तो मुसाफिर लग रहा है।
1: ताज्जुब है, न इसके पास ज्यादा राह है, न बीवी बच्चे हैं, न कोई साथी, अकेला चला आ रहा।
0: तुम भी तो तन्हा थे।
1: मैं तो कासिद था।
0: वो देखो एक और आ रहा है।
1: तीसरा आदमी भी रास्ते में है। सुनो
2: कुछ करो।
0: मैं यकीन से कह सकता हूं ये मुसाफिर नहीं है, जरूर कोई बात है।
3: इनका पीछा करना चाहिए, उठो चलें।
1: मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे अबा मोहम्मद का नामा दमिश्क पहुंचाना है।
0: मैं ले जाऊंगा, अगर तुम दमिश्क गए तो पकड़े जाओगे।
1: नहीं, मैं खुद जाऊंगा, नामा मेरे सुपुर्द किया गया है।
4: फिर दोबारा वही मुसीबत होगी, बाजार में बर्दा फरोश तुम्हें देख लेगा, कौड़े पड़ेंगे और तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी।
1: नहीं मालूम, हमेशा बर्दा फरोश दरवाजे पर थोड़ी खड़ा रहता है। इसके अलावा अब तक मुझे कौन याद रखेगा। चलो फिर कूफे में मुलाकात होगी।

0: सलाम अलैकुम, बड़ी जल्दी में हो।
1: वापस कबीले जा रहा हूँ, तुम कहाँ?
0: माविया के लिए पैगाम लेकर जा रहा हूँ।
1: खुदा हाफिज़।
0: यमानिल्ला।

0: निकाह बताओ, अपने नाम बताओ।
1: वली इब्ने अम्र,
2: कैस इब्ने मोहम्मद,
3: बुश इब्ने मंसूर,
4: माज,
1: हारून।
0: किसको अपना अमीर अल मोमिनीन मानते हो?
1: माविये,
2: माविया इब्ने अबी सुफियान,
4: माविये।
5: जो भी माल दे।
0: पैसों की किसने बात की? तुम्हारा नाम क्या है?
3: बुशबने मंसूर।
0: इन लोगों के सरदार तुम हो, अब अपने सरदार को अच्छी तरह देख लो और पहचान लो। अब से तुम पांचों हमेशा हर जगह एक साथ रहोगे। यहां से निकलने के लिए तुम लोगों को तलवारें, घोड़े और ज्यादा सफर दिया जाएगा। अब तुम लोग जल्द से जल्द कूफा, मदीना और बसरा के देहातों तक पहुंच जाओ। जहां कहीं भी तुम्हारे कदम पहुंचे, तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन हसन इब्न अली का नुमाइंदा बताना और जितना भी हो सके उन लोगों से लगान और भत्ता वसूल करने की कोशिश करना। अगर कोई ना दे या मुखालिफत करे तो उसे बेफिक्र होकर हसन इब्न अली का नाम लेकर कत्ल कर देना और उसका मालो मता और घर बार सबको जला कर खाक कर देना और माल गनीमत को आपस में बांट लेना। हुजर इब्न मंसूर तुम सबका सरदार है, उसका हुक्म मेरा हुक्म है। मुझसे किस तरह राबिता किया जाए मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, अब रहा तुम लोगों की तनख्वाह का। तुम्हारी तनख्वाह हर माह 100 दमिश्की सोने के सिक्के हैं। राजी हो?
5: जी सरदार।
0: अब जाओ इस तरफ से। इब्ने मंसूर, तुम बाहर मेरा इंतजार करो। अब उसे अंदर भेज दो।

0: कौन हो और कहां से आए हो?
1: मेरा नाम हर्ब है। अमीर मुआविया इब्न अबी सुफयान के लिए खत लाया हूं।
0: अमीर अल मोमिनीन कहना काफी है, जाओ।

0: रुको,
1: खत लाया हूँ।
0: किसका?
1: हसन इब्न अली का।
0: चलो।
2: उस रोज कि जब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने कि जिन पर खुदा का दुरूद व सलाम हो वफात पाई, तो मुसलमानों ने मेरे हाथ पर बैत की और मैंने ये ख़त तुम्हें इसलिए लिखा है ताकि मैं खुदा की बारगाह में माजूर रहूं। बातिल को छोड़कर राह हक का इंतखाब करो, सरकशी से दूर रहो और मुसलमानों का खून बहाने से परहेज़ करो। उम्मीद है कि खुदावंद आलम मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत हमदिली ईजाद करे। लेकिन अगर तुमने किसी और रास्ते का इंतखाब किया तो मैं मुसलमानों के हमरा तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा और अपने और तुम्हारे दरमियान फैसला करने के लिए खुदा की बारगाह में पनाह लूंगा, इसलिए कि वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
3: यकीन नहीं आता कि मुझे इस तरह का खत लिखेगा।
2: क्यों यकीन नहीं आता?
3: देखो कैसी जुरात, अभी उसकी खिलाफत के चंद रोज भी नहीं गुजरे, अभी हुकूमत के पाए लरज रहे हैं। क्या तुम होते तो लिखते?
2: मैं तो नहीं, लेकिन वो लिखता है, इसलिए कि वो उसी बाप का बेटा है, अली इब्न अबी तालिब का।
3: उसका बाप भी मुझे ऐसा खत ना लिखता।
2: क्यों नहीं? वो जरूर लिखता।
3: जरूर कोई पुश्त बना है जिसकी वजह से इतना निडर और बेबाक।
2: शायद ना भी हो।
3: क्या नहीं? नहीं पड़ा, अलल ऐलान मुझे जंग की दावत दी है।
2: कौन कहता है तुम्हें इताअत की दावत दी है?
3: इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो जानता है कि मैं उसकी इताअत नहीं करूंगा।
2: पिसरे अबू सुफियान, मेरी और तुम्हारी मुश्किल यह है कि हम उसकी सियासत को अपने मियार से देखते हैं। उसके बाप अली के साथ भी हमारी यही मुश्किल थी। हमको ये मानकर चलना पड़ेगा कि हमारा और उसका तर्ज फिक्र बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हम उसकी आइंदा की तदबीर के बारे में कोई पेशिन गोई नहीं कर सकते। वो ऐसा काम करता है जो हमारी नज़र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
3: ये माकूल नहीं है।
2: लेकिन फिर भी करता है। हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन हमें हसन इब्न अली को हल्के हाथों नहीं लेना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारे सामने एक और अली है, न कि एक ना तजर्बेकार जवान।
3: ये नामा राज की तरह बेमोहरा रह जाए।
2: इस खत का गवाह सिर्फ वही कासिद है। मुमकिन है खत उसने पढ़ा हो।
3: तो इस खत की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए।
2: हाँ, तुम ठीक कहते हो।
3: किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा खत लिखने की जुर्रत की है।
2: वो कासिद जो ये खत लेकर आया है कहाँ है?
3: यही है। ए बोसर, उस कासिद को ले आओ।
4: अस्सलाम वालेकुम।
2: नाम क्या है तुम्हारा?
4: हर्ब सरदार।
2: कहाँ के रहने वाले हो?
4: ईरानी हूँ।
2: कूफा में क्या कर रहे हो?
4: मुसाफिर था, ज्यादा सफर खत्म हो गया था। 10 सिक्कों के बदले ये खत शाम तक लाया हूँ।
2: अगर मैं यहाँ नहीं होता और अमीर पढ़ना नहीं जानता तो तुम क्या करते?
4: उस खत को मैं पढ़ता।
2: तो तुम पढ़ना जानते हो?
4: हाँ।
2: तो तुम पढ़ना भी जानते हो? काबिले तवज्जो है, ईरानी अरबी जानता है।

0: तुमने इस खत को पढ़ा है?
1: नहीं अमीर
0: सच कह रहे हो?
1: जी।
2: देखो, रस्ते में कोई वसवसा तो पैदा नहीं हुआ कि देखूं इस खत में क्या लिखा है?
1: नहीं
2: अगर मैं होता तो जरूर वसवसा होता कि पढ़ूं क्या लिखा है इसमें।

0: ये हमसे कुछ छुपा रहा है।
1: शियों में से तुम्हें मेरा महल अच्छा लगा?
2: महल? मैं क्या कह सकता हूं अमीर,
1: ये कसरा से अच्छा नहीं है।
2: मैंने देखा नहीं।
1: हसन इब्ने अली का घर तो देखा होगा, बताओ कौन सा अच्छा है। कासिद को कैद होना चाहिए, इसकी तहकीक करो, कौन है और क्या जानता है।
3: दरवाजा खोलो, सरदार आए हैं।
4: चल अंदर, चल चल।

0: चिड़ी को नीचे करो, चलो। चलो नीचे चलो। ए, किन कामों में लगे हुए हो?
1: मर गया।
0: मुंह बंद रखो, यहां पर जब तुमसे कुछ पूछा जाए उस वक्त मुंह खोलना।
2: नहीं मालूम तेरी आंखों में वाकई खौफ है या गुस्ताखी, जल्द ही मालूम हो जाएगा। इसे यहीं रहने दो, मैं खुद इससे निपटूंगा।
0: ताअत सरदार।
3: इसे थोड़ा पानी पिलाओ।
4: लो पानी पी लो।
5: इसकी गलती क्या है? ये अमीर के 10,000 सिक्कों का मकरूज है, क्योंकि इसकी गलती से अमीर के एक सरदार का गुलाम फरार हो गया। नहीं, वो अमीर का सरदार नहीं है, बल्कि कबीले का रईस है जिसका गुलाम फरार हुआ है। मुझे क्या मालूम गुलाम फरार हो गया, लिहाजा या तो गुलाम को वापस लाऊं, या 10,000 सिक्के अमीर को दूं, या हर सिक्के के बदले कोड़ा खाऊं।
4: अमीर बकता है, ये बेचारा तो यहाँ कैद में पड़ा है, गुलाम को कैसे वापस लाए?
3: मुझे क्या पता, क्या मैंने इसे कैद किया है?
6: ओ अल्लाह, मैं क्या करूं, तो मेरी मदद कर, मैं 10,000 सोने के सिक्के कहां से लाऊं?
4: इसके हाथ खोल दो, ये 1,000 तक पहुंचने से पहले मर जाएगा।
6: अभी तक इसने सिर्फ 150 कोड़े खाए और मैयत की तरह हो गया, और कहां 10,000 कोड़े।
3: इससे तो बेहतर है इसे जल्लाद के हवाले कर दिया
1: जाए। आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं हूं हरबीब इब्न अब्दुल्ला।

0: वही गुलाम जो भाग गया था।
1: क्या कह रहे हो?
0: उठो, सिपाहियों को बुलाओ कि मुझे गिरफ्तार कर लें। अपनी जान बचाओ, चलो शोर मचाओ। देख नहीं रहे हो कि मैं वही गुलाम हूं? चलो सिपाहियों को बुलाओ।

0: फातमा दरवाजा खोलो।
1: मारो, मैं नहीं डरता। मैंने कहा था ना मैं नहीं डरता।
2: सलाम अलैकुम। अमू कहाँ है? सलाम अलैकुम।
3: क्या कोई बात हो गई?
2: आपको गिरफ्तार कर लिया गया।
3: किस तरह?
2: जैसा कि मैंने सुना है, मुआविया के लिए अबा मोहम्मद की तरफ से नामा लेकर आया था और मुआविया ने हुक्म दिया कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए।
0: अबा मोहम्मद का कासिद?
4: आखिर वो कूफा पहुंच गया।
0: अहमद सादिक की क्या खबर है?
2: मुझे कोई खबर नहीं।
3: उन्होंने क्या उसे पहचान लिया कि ये वही है?
2: उसे ना पहचाना जाता अमूजान, काश उसे ना पहचाना जाता। बदकिस्मती से उसको ऐसे जिंदान में डाला गया जहां पर गुलाम बेचने वाला भी मौजूद था और रोजाना उसे कोड़े मारे जा रहे थे, इसलिए कि अमीर ने उसकी कीमत अदा कर दी थी।
4: तुम कुछ नहीं कर पाए?
0: किसी और जिंदान में डाल देते उसको।
2: मैं तो खुद यही चाहता था लेकिन नहीं कर सका। बुसरिब ने अरताद वहां था, उसने नहीं करने दी।
3: वाह मुसीबत, अब उसके साथ क्या करेंगे?
2: जैसा वो चाहते थे वैसा ही किया और माविया के हुक्म के मुताबिक उसको बहिश्त में मुंतकिल कर दिया गया।
3: बहिश्त? बड़ी वहशतनाक जगह। रशीद ने इससे पहले उसकी हालत मुझे बताई है।
2: वहां 3 या 4 दिन से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता।
3: दर्दनाक मौत।
4: हमें कुछ करना चाहिए।
2: किसी के बस की बात नहीं।
0: ऐसा करो, जिंदान का दरवाजा किसी बहाने से खुला छोड़ दो और जब वो भागने लगे तो उसको पकड़ना नहीं बल्कि उसे जान से मार देना, ये उसके हक में बेहतर है।
2: मुमकिन नहीं, खुद मुझे भी उस जगह तक जाने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है क्योंकि वहाँ कई एक निगहबान हैं।
4: हमें महल में ले जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे।
2: कैसे कैसे मैं तुम लोगों को वहां ले जा सकता हूँ, किस बहाने से? बच्चों जैसी बातें ना करो।

0: है कि तुम जानते हो।
1: हाँ मैं जानता हूं तुम सच कहते हो।
0: लोगों की निगाहों से पोशीदा खत लिखा है।
2: शायद दोस्ती का पैगाम हो।
1: अदालत की कबूलियत हलाकत और जहन्नम से नजात का पैगाम था। वही रविश जो आपके नाना रसूल खुदा और बाबा अली मुर्तजा की थी।
0: अदालत कबूल करे, अदालत नहीं होगी जब तक कि अबू सुफियान का बेटा मर नहीं जाता।
1: मुझसे ज्यादा कौन है जो हिंदा के बेटे की खयानत से आशना हो? तुम क्या बुसरिब ने अरतात ने उसी के हुक्म से मेरे दोनों बेटों की गर्दन नहीं उड़ाई?
0: फिर क्यों नहीं ऐसा काम करते कि अबा मोहम्मद जंग का हुक्म दे दें?
1: नहीं हो सकता। वल्लाह अगर वो इताहत कर ले और अबा मोहम्मद उसकी तौबा कबूल कर ले तो हम उसके साथ हमदस्तरखान हो जाएंगे। लेकिन
0: लेकिन हम नहीं। हमने उनकी इस शर्त पे बैत की थी कि वो मुआविया से जंग करें।
1: अबा मोहम्मद ने किसी की बैत कबूल नहीं की थी मगर इताहत की शर्त से।
3: मुआविया को क्यों ढील दी जा रही है जबकि कूफा अबा मोहम्मद के साथ है?
1: ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या कूफा सचमुच उनके साथ है? क्या कूफे वाले दिलो जान से उनके साथ हैं?
0: इतने सारे लोगों ने बैत का हाथ बढ़ाया है, ये कूफे वाले नहीं हैं क्या?
4: जिस वक्त अबू सुफियान के बेटे ने अहद शिकनी की और फरेब दिया तो अमीर अल मोमिनीन अली ने बहुत दिनों तक नुखैला में इंतजार किया लेकिन कोई जंग के लिए राजी नहीं हुआ सिवाय चंद अफराद के।
0: तुम हमें ताने दे रहे हो।
5: लोगों के दिलों में हसन की मोहब्बत अली से ज्यादा है। ये उन लोगों ने हसन इब्ने अली की बैत की है जो उनके बाबा अली से दुश्मनी रखते थे।
0: ये सही कह रहा है?
3: बिल्कुल ठीक कह रहा है।
1: शायद अब जंग के ढोल लोगों को नुखैला जाने पे आमादा करें। खुदा करे ऐसा ही हो जैसा कि तुमने कहा है अशस।
0: इब्ने अब्बास मेरी आखिरी बात सुन लो। अपने चचाजाद भाई से कह दो कि कूफे वालों ने उनकी बैत इसलिए की है कि शाम के साथ जंग हो, माविया से जंग। वस्सलाम। चलो।
6: सारे मुहाफिज तैयार हो जाओ।

0: Bazan.
1: रशीद ने कहा है कि हम उसका यहीं इंतजार करें। हाँ, इसी हाउस के पास।
2: Thank you.

0: जाओ वहां खड़े हो जाओ। अपने चेहरे से नकाब हटाओ। अपना नाम बताओ।
1: हमजा इब्ने खालिद।
0: यहां तुम्हें किसने भेजा है?
1: शाही जिंदान के एक निगहबान ने।
0: दुनिया व आखिरत किसके हाथ में है?
1: अमीरुल मोमिनीन के हाथ में।
0: तुम किसे अमीरुल मोमिनीन जानते हो?
1: माविया इब्ने अबी सुफियान।
0: अगर वो कहे किसी बेगुनाह को कत्ल कर डालो तो कर दोगे?
1: हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है वो बेगुनाह नहीं होगा।
0: क्या तुम अमीरुल मोमिनीन की खातिर जासूसी करने के

0: ये तैयार हो?
1: अगर वो चाहे तो। हाँ
0: वो यही चाहते हैं।
1: मैं तैयार हूं।
0: ठीक है, अब जल्द से जल्द कूफा पहुंचो और अबा मोहम्मद के लश्कर में दाखिल होकर जासूसी करो, और हर नई खबर जुहैर इब्न जैद के तवस्सु से यहां तलक भेजो। जुहैर, अपना चेहरा दिखाओ इसे, इसे अच्छी तरह पहचान लो और इसके हर हुक्म की चूं चरा किए बगैर तामील करो।
1: हाँ
0: तुम्हारी माहाना तनख्वाह 100 सोने के सिक्के हैं जो जुहैर तुम्हें अता करेगा।
1: खुदा अमीरुल मोमिनीन को तुले उम्र दे।
0: जाओ और जितना जल्दी मुमकिन हो हरकत करो। अगर तलवार और घोड़ा नहीं है तो तुम्हें दिया जाएगा।
1: घोड़ा है मगर तलवार नहीं है।
0: जाओ फिर तलवार ले लो वहां से।

0: दूसरे को भेजो।
1: जाओ उधर खड़े हो जाओ। चेहरे से निकाब हटाओ और अपना नाम बताओ।
2: काब इब्ने आम्र।
0: कहां से हो?
2: दमिश्क।
0: खोलो।

0: तुम्हारे पास तलवार है?
1: तलवार नहीं है।
0: जाओ उधर से ले लो। अगर तुम्हारे पास तलवार और घोड़ा नहीं है तो तुम्हें दिया जाएगा। अजीब बात है, घोड़ा ही सही, कुछ तो है। लो तलवार ले लो।
1: किसी के पास न तलवार है न घोड़ा, मगर मुझे यकीन है वो सब झूठे हैं। इनमें से जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। यही ठीक है, इसकी धार फौलाद की है, एक ही वार में सर से लेकर नाफ तक चीर देती है, मगर ये तुम्हारे जोरे बाजू पे मुनहसिर है।
2: सलाम।

0: आओ लो, ये तुम्हारे सफर के लिए घोड़ा और तलवार है,
1: तलवार नहीं,
0: वहां से ले लो।
1: आओ। अरे क्या कर रहे हैं?

जाओ, तुम वहां खड़े हो जाओ। तुम्हारे पास तलवार है, जाओ वहां से ले लो।

0: Yalla. Yalla.
1: मैं ले जाता हूँ सरदार।
2: बहिष्ट के मुसाफिर हैं, मैं खुद ले जाऊंगा।
0: जाना।

0: Al mir die Sack.
1: Allah!
0: Zindanban! Zindanban! दरवाजा खोलो।
2: इजाजत नहीं है। तुम्हें तो मालूम है ये नहीं खुल सकता।
0: मैं कहता हूँ खोलो। सरदार बुशरब ने अर्थात यहीं पर है। उसी ने हुक्म दिया है। आता ही होगा अभी। इन दोनों कैदियों को तहवील में लो। किस बात के मुंतजर हो? क्या सोच रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो। निगहबान, ए निगहबान, इधर आओ, जल्दी आओ, मदद करो, आओ जल्दी, जल्दी करो, इससे पहले कि मुसल्ला हो जाएं, इनको काबू करो, जल्दी आओ, चलो आओ, मेरे साथ आओ। वो वहां पर है, जाओ जल्दी जाओ, इसको लेकर के आओ, यहां पर ले आओ जल्दी।
3: क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं निगहबान। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो,
0: चलो आओ जल्दी करो, शाबाश। इस दरवाजे को खोलो, इस दरवाजे को, इस दरवाजे को खोलना जरूरी है, आओ धक्का लगाओ।
3: दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो,
0: जोर लगाओ। चलो और जोर लगाओ।

0: Oh.
1: अब यहां देर नहीं करो। अभी तक मुर्दों को उठाने नहीं आए हैं। हर रोज गुरूब के वक्त मुर्दों को इस दरवाजे से बाहर फेंकते हैं।

0: हारिस
1: आओ जल्दी आओ।
2: सलाम चाचा।
3: सलाम चाचा। चाचा सलाम अलैकुम।
4: लोहर हाँ
1: चलो आओ चले
4: जल्दी से सवार हो जाओ यहाँ से हम निकले जल्द से जल्द।

0: जब से ये कमबख्त यहाँ आया है सबको अपनी तरफ जमा कर लिया है, नहीं मालूम कि इसमें मकसद क्या है।
1: चलो उस खेमे में चल के देखते हैं जो इतना ज्यादा लोगों का आना जाना है।
0: चलें देखें क्या बात है।
1: चलो उठो।

0: तुम तो उस ग्रोह के सरदार हो, तुम्हारी बात तो सुनी जाएगी।
1: सिफीन में तो हमने मुआविया की बात सुनी थी, लेकिन उसने अपना वादा वफा नहीं किया।
0: ये मुझ पे छोड़ दो, तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हारे पास 1000 जंगजू है, अंदाजा है तुम्हें कितना माल मिलेगा?
1: हम लोग मुआविया के लिए नहीं लड़ेंगे।
0: फिर हसन इब्न अली के लिए भी मत लड़ो, क्यों, कैसा रहेगा? ठीक है ना?
2: तलवार ना चलाने का क्या दोगे?
0: फीकस 200 सिक्के।
2: 200 सिक्के क्या, बहुत कम है। हसन रसूल खुदा का बेटा है, उसके साथ बेवफाई के लिए बहुत कम है।
0: 500 सिक्के, 500 सिक्के तुम में से हर एक के लिए और 50 सिक्के हर जंगजू के लिए।
3: ठीक है, हम पैसे पहले लें।
0: ये नहीं हो सकता अबू उमर, आधे तुम लोग अभी ले लो, आधे बाद में।
4: कबूल है,
5: हम तुम्हें जानते।

0: इब्न जाबिर, अगर अहद टूटा तो समझ लेना।
1: अहद नहीं टूटेगा, वादा। मिलाओ हाथ।
0: लमूमी था करो।
2: अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में, अभी नहीं, बाद में। चलो उस तरफ।
3: मैं माफी चाहता हूं, कोई राजी नहीं हो रहा है। हमारी तरफ से अबा मोहम्मद को सलाम पहुंचाएं और कहें कि हमने तुम्हारी बैत की है। तुम फर्जंदे रसूल हो, लेकिन हम जंगो जिदाल वाले नहीं हैं। हमारे मर्द थक गए और वो कहते हैं कि हम एक और जंग का तहम्मुल नहीं रखते।
1: अभी कौन सी जंग हो रही है? हसन इब्न अली को तो सिर्फ आपकी हिमायत चाहिए। वो तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर माविया के साथ जिहाद का वक्त आया तो आप किसका साथ देंगे।
3: हम क्या करें, हम तो अबा मोहम्मद के साथ हैं। हम उनके खिलाफ जंग नहीं करेंगे, बेतरफ रह जाएंगे।
1: ये तो फर्जंदे रसूल को देने के लिए कोई जवाब ना हुआ। साफ साफ बताएं आप किसके साथ हैं।
4: तुम यहाँ इतिहास से बैठो, मैं वहां से आता हूँ।
3: लोग जंग से आजिज हो चुके हैं, दूसरी तरफ बरादर कुशी
0: ये एक फरीजा है जिससे शाना खाली नहीं किया जा सकता। फिर जहाद का क्या होगा?
3: मैंने कहा ना, हमने उनकी बैत की है, लेकिन सुलह में अगर जंग पेश आई तो हम बेतरफ रह जाएंगे। मैं चलूं।
0: कौन है? बोलता क्यों नहीं? जासूसी कर रहा है, बोलता क्यों नहीं? इधर
3: सामने।
1: कौन हो तुम लोग?
5: ना डरो, दोस्त हैं तुम्हारे, अबा मोहम्मद के दोस्तों में से हैं।
1: इसी कबीले से हो?
2: नहीं, हम शाम से आए और अबा मोहम्मद की ज़ियारत का इरादा है।
1: तो यहाँ क्या कर रहे हो?
5: बताते हैं।